दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा। अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के, रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे। बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखिर रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार आखिया सी, जाओ दलिदरी, सुदामा गरीब हो गया, दलिदरी हो गया, घरवाली दे कन्नी सरोत पई, एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया, ओ सानू भुले नहीं, आखिया की सबूत है, आखिया भुलदा उन्हां नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। कहण लगी जे सानू ओ ना भुलदे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे, इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी, तां सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच, पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी, नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी, भाग उन्हां दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है, उन्हां दे पुन्नां नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है, ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती, ओह गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामां पईआं, मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैण नहीं, भगवान चट तैयार हो गए, मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा हूं।

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ए आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जाना। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतर जामी है। हर अंतर जामी सब बित जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रे। आखिया इतवार नहीं आया। कहन लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है तेरी जबान ते इतवार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्रे। सुदामा दलिद्री हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आख्या ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई बामणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जा। ता बहाना लगाया भी एडे वड्डे पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई ओह धन भी छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चौल जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जाके

आए इते ना किते दिन खोए इना दिन किथे रे रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा फर के ले आई जिसले चरण तोड़ लगे आओ सखा तू पाए महादुख आए इते ना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दिते फिर आखन लगे सुदामे सुनिया भी तेरा विआह हो गए हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हन तुहाडी कृपा है कहन लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलों की पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे सत्संग बोलो श्री वाह सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा ये मेरे भक्त दा प्रसाद कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां दुख सुख फोले एक दिन सुदामे ने बेनती कीती भगवान हुण आ गया बख्शो बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावां वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा कहण लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं परे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कट्ठे रह के समय गुजारे सन ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन ओ दिन नहीं भुलते सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाओ ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है पता नहीं की कुछ बख्श वड़ियां दा काम है दान देना छुपा के दे होशियां दा काम है दान देना दिखा के देना आख्या है वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण भी प्यार तो बड़ा कीता है जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते कुट गल वखड़ी पाई सुदामिया फिर भी आवी सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता तां कुछ नहीं बस गली बाती प्यार बड़ा कीता पर कुछ दे दिंदे घरवाली नूं की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिसदे बूहे ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन ओ की आखेगी उसदे द्वार तों तूं खाली आ गयो तैनू कुछ ना मिलिया ए मन विच पिया सोचदा ही सी जिसे कुट गल वखड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी पुठे पैरी सुदामा तुरिया कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो चंगे एस जमाने दे यार जारो जेड़े हाल आए मुड़े जामदे हां केड़ा बख्श दिता सानू माल यार हथों चौल भी दे गवा बैठे अजड़े कुछ कुछ चौल सन वह भी भुखा खा गए
जे ना खांदा ते असी एक डंग उबाल के खा लेंदे साडे बाल बच्चे दा गुजारा हो जांदा। ओ भी खा गए कुछ ना बख्शे। बड़ा निराश होया सुदामा, मन विच चोरदा जिस वेले घर वापस परतिया ते गली विच आया ते की डिठा भी जिथे उसकी चुगी सी उथे सोने का महल खलोता। सतसंग बोलो श्री वाह। किसे नु पुछदा क्यों भाई इथे तां सुदामे दी चुगी सी। मैं आख्या सुदामिया इथे तेरा ही महल है, ये सोने का मंदिर। हैरान पिया होवे सुदामा भी ये किवें बन गया सोने का। जा अंदर वड़िया घर वाली आई पैरी मत्था टेकिया। सुदामे ने आख्या आ सोने का मंदिर। उसते भी नेत्र बार आए ते आख दी है स्वामी मैं आख्या सी ना एक वारी भगवान कृष्ण महाराज दे कोल जरूर जा, साडा दलिद्र कटिया जाएगा, साडी गरीबी कटी जाएगी। आ जो कुछ पे वेख दे हो सोने का मंदिर अंदर पदार्थां का ढेर लगा हो ये सब कृपा भगवान दी है।

गिदड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल

कि ए तिलक मैं पूंजन नहीं देंगा, मैं जुल्म नहीं होन देंगा, किसे दा धर्म खोन दा किसे नू कोई हक नहीं। ते ओ हाथ नू रोकन वास्ते भावे अपना सीस अपना सिर कटवाना पिया, दिल्ली दे चांदनी चौक विच सिर तां कटवा दिता, पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सैरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी, हुण तेरा कारोबार

गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदियां भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों

मन मुखो जंगल दे बूटियां वांगू गुणा तो हीणे ने इना दे अंदर वकार ने इना मन मुखां दे अंदर ठग लुके रहिंदे ने राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग इना मन मुखां दे अंदर माया दा मोह दा प्यार होण करके इना दे अंदर ईरखा द्वैत ए वकार काम क्रोध लो मोहंकार ए खतरनाक गुणा नू ओगणा च बदलने वाले लुटेरे लुके हुए ने। जपो सतनाम श्री गुरमुख बगीचे दे बूटे ने गुरु दे बगीचे गुरमुख गुरु दे नेम विच ने गुरमुख गुरु दी तरतीब च रहिंदे ने गुरमुख गुरु दे सिद्धांत ते रहिंदे ने ते गुरु भी ऐसा माली है जिस नू पत्ते पत्ते ते डाली डाली दी खबर है सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पास पत डाली। कोई बूटा हो सकता है बिहार तो आया हुए कोई हो सकता है बंगाल तो आया हुए कोई हो सकता है लाहौर तो आया हुए कोई कितों पर सतगुरु तेरे बगीचे विच जदों आके लग जांदे ने सारियां नू फल भी इको लगदा है सब ना फल लागे नाम एक इना दी बाणी एक इना दा बाणा एक।

मनुख बड़े सामान इकट्ठे करदा, बड़िया वस्तुआं संभाल संभाल रखदा है। भाई ये इस उम्र विच आ उस उम्र विच 100 बरस का समान इकट्ठा कर ले, पर पल की खबर नहीं, पता नहीं अगला श्वास आना भी है कि नहीं आना। पर मनुख बहुत कुछ कर ले। फरीद जी कहते हैं भाई ये तो कंधी उत्ते रुखड़ा, ये मनुष्या जन्म जिस तरह वहदे दरिया के किनारे ते कोई छोटा जिहा बरूटा होवे ते कोई पता लगदा किस वेले पानी दी छल आवे उस बूटे नू रोड़ के लै जाएगी। बस तेरा भी इतना को ही जीवन है, क्यों एडिया पक्कियां बन बैठे हैं। एनी लोइनी देखदियां केती चल गई, तेरे अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए, तैनू अजे भी समझ नहीं आउंदी। तू भी उसे लाइन च खड़ा है, पता नहीं कल की दीवारी है भाई। ते फिर इसनू जप जप के मनुच्छा जन्म दी सफलता साध संगत दी सेवा और सिमरन करना, मन जोड़ना, अमृत वेले उठना। जो भी कोई गुरु, किसे दा भी कोई गुरु है वह मुबारक है। अपने गुरु दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के अपना जीवन सफल करे, मनुच्छा जन्म ताई सफल हो सकता है, संसार ते आना ताई सफल है। इसलिए फरीद जी कहते हैं फरीदा चार गमाया खंड के चार गमाया सम, तू ते जेड़ी गल चेते रखनी सी वो तैनू भोली गई है। तू चार कम तो चेते रख ले, खाना पीना हसना सौना, ते विसर गया है मरना। जे तैनू मरना याद होंदा तो तू अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन कर। तैनू पता होंदा मैं संसार ते किस लिए भेजा गया और केड़ा कम कर रहा। इसलिए चार गवाया हंड

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए।

ध्यान दे विच वाहिगुरु तेरा नाम तेरी याद रहिंदी है उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां।

तू मेरो प्यार हो तो कैसी भूखा, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, ऐ मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है, ऐ मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जड़ा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुनना, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। सो इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस उते होंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनू मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछीए, सच्चे पातशाह साड़ी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह करे? हुण सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, ते असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे ते फिर ये किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? ये किवें हो सकता है? जे प्यार होवे ते उहदे नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 3 घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उहदा नाम भी प्यारा लगता है और उस दीआं सारियां ही चीजां प्यारियां लगदियां। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेका तेरे च गुण हन, क्योंकि जिहदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिहदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहंदे हन तेरे अत्यंत गुण हन, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, कहंदे तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हां, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हां। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप ते कई दफा तरस करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है। वट टू डू विद इट वी डोंट नो। Sometimes we even go to the extreme of taking our own life. पर महाराज जी आखदे हन वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करदे हन कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहंदे हन वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नूं वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नूं कहिंदे हन कि अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साहिब सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वह एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनू जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी नू उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, कुछ भी निमखना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ताम भाव के हा काला जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेमांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंग दे हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ए ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलाड़ियां पईयां हन सामने, ते अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखिया है, ते महाराज जी आखदे हन उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहिंदे ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं कहते नहीं, तीन बारी आख्या है कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए, कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बिन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है, साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मों रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलीशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नूं, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखदे हन जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है, साधी ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया दे नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनूं सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संत संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहा

मैं उन्हां दे चरनी लगदा हां, मैं उन्हां दे पैरी लगदा हां। कहिंदे संत सहाई प्रेम के, संत ही हन जो हेल्पफुल हन, जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वह आप प्रेम दे नाल भरे हुए हन, अते ओ क्योंकि प्रेम दे नाल भरे हुए साडे अंदरों प्रेम जगा सकते हैं। इस करके कहिंदे मैं संतां दे चरनी लगदा हां, पर साडी ईगो तो सानू झुकनी ही नहीं दिंदी, असी तो किसी के चरनी लग ही नहीं सकते। पर बाणी तो आखदी है ना, साडे अजिहे कॉन्सेप्ट बन गए हैं कि असा गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो अलावा किसी ने मत्था नहीं टेकना, और उस दे नाल असी इतने हंकारी हो गए हैं कि कोई भी शख्सियत आ जाए, कोई गुणवान आ जाए, पर असी झुक नहीं सकते क्योंकि साड़ी ईगो ऐसी है। और जब तक असी चुकांगे नहीं, असी समझ लो पत्थर हैं, और पत्थर च भी कदे प्रेम पैदा हो सकता है। महाराज जी आखते हैं संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागों पाए, जे पैरी लगना चरनी लगना गुरमत दे विच उल्ट हुंदा ते आपंक्ति क्यों लिखी हुंदी है। वो कहते हों तिनके लागों पाए, वो इतने महान हैं कि वो प्रेम का ही सागर बने पाए हैं, उन्हां दे मैं चरना दे उते लगदा हां, चरनी लगदा हां, पैरों ते मत्था टेकदा। संत सहाय प्रेम के हां तिनके लागो पाए, सिर्फ ओही हैं जो साडे जीवन दे विच प्रेम पैदा कर सकते हैं। उसकी अगे चल के विचार की जाएगी अगले कीर्तना च कि वो किवें करदे हैं। प्रेम किवें प्राप्त किया जाए, हुण इस उत्ते प्रमाण चल रहे हैं। अगला प्रमाण कहते हैं मन रे राम जपो सुख होए, कहते हैं मन रे राम जपो, पर महाराज जी राम नाल तो सारा प्यार ही नहीं है, उसनू जपिए किवें, जब प्यार ही नहीं है उसनू जपिए किवें। पहली अद्धी पंक्ति च आख्या है मन रे राम जपो सुख होए, उसनू जप के सुख होएगा, पर जब उसके नाल प्यार ही नहीं है तो उसनू जप किदां लईए। ए मनुआ दहन स्थान दा ओ कैसे हर गुण गावे, ए मन ते दस दिशा दे विच दौड़ा फिरदा है, किवें उहदे प्रेम नाल गुण गावे, प्रेम ही नहीं है। पर अगली लाइन दे अद्धे हिस्से दे विच फिर जवाब दे जांदे हन कि प्रेम किवें मिल सकदा है। कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, परंतु अगला हिस्सा पंक्ति दा कहिंदे हन

बिन गुर प्रेम ना पाई है कहते गुरु तो बिना जो प्रेम वस्तु है ये नहीं प्राप्त हो सकती। तो सारी दुनिया के जितना भी आख्या जाता है ना कि मैं तेनू प्यार करता हाँ मैं तेनू प्यार करता हाँ इत आदि शब्द जो वरते जाते हैं ये सारे ही फेक हैं। कोई किसी नू प्यार नहीं करता क्योंकि जितनी देर तक वो प्यार अंदर पैदा ही नहीं होया है। हाँ असी किसी ना किसी तो सानू कोई जरूरत पूरी होंदी है उस जरूरत पूरी होने करके असी उस नू प्यार करते हैं। जो उस जरूरत पूरी ना हो तो साडा प्यार बदल जाता है नफरत च बदल जाता है। सो साडा प्यार किसी ना किसी नीड के उत्ते बेस्ड और नीड पूरी होंदी है तो असी उस नीड नू प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी आखते हैं प्यार एक आत्मक अवस्था है प्यार एक स्टेट ऑफ माइंड है प्यार एक आत्मा की एक क्वालिटी है प्यार एक आत्मा की सुगंधी है प्यार एक आत्मा का स्वभाव है। कहते गुरु तो बिना प्राप्त नहीं हो सकता बिन गुर प्रेम ना लभी। अगे आखते हैं गुरमुख सच्ची आशकी ए लाइन कह के समाप्त कर रहा मैं। गुरमुख सच्ची आशकी सच्ची आशकी सच्चा प्यार जित प्रीतम सच्चा पाई है जिस प्यार दे नाल ओ सच्चे प्रीतम वाहिगुरु नू असी पा सकना है ते उसने सानू प्यारा लगना है ते उसका नाम सानू प्राप्त होना है। कहते हैं ओ आशकी जो है गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाई है अनदिन रहे आनंद नानक सहज समाई है। कहते जेड़ा प्यार पा के दिन रात ब्लिस के विच रहना है सहज के विच रहना है। कहते हैं सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सारे इस पंक्ति नू बोलो सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सो अज का कीर्तन इत्थे तक पहुंचा है कि सानू जरूरत है उस ही किस्म दी प्यार दी जिस किस्म दा महाराज जी दा उस नाम वाले दे नाल प्यार है। महाराज जी का उस नाम वाले दे नाल प्यार है उसके नाम दे नाल प्यार है क्योंकि जिस नाल प्यार हो उसका नाम प्यारा लगता है उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है उसका हर कर्म प्यारा लगता है। तो साड़ी जाचना यह है कि सानू प्यार किमें प्राप्त होवे ताकि सानू भी नाम प्यारा लगे तो सानू उसकी हर वस्तु प्यारी लगे उसका हर कर्म प्यारा लगे वो प्यार सानू किमें मिले। इस तस्वीर दे विच इस पॉइंट ते जाके गुरु महाराज जी गुरु नू विच लैके आ रहे हैं कि विदाउट गुरु दैट लव इज इम्पॉसिबल। गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही है जिसनू वो तमाम वजह का पता है कि साडे अंदर प्रेम क्यों नहीं है अते गुरु ही है जिसनू पता है कि इन्हां दे अंदर प्रेम किस तरह पैदा करना है जहर नू किस तरह निकालना है पत्थरां नू रॉक्स नू किस तरह निकालना है। क्योंकि बाणी आखदी साडे अंदर ते पांच बड़े वड्डे वड्डे भूत रहिंदे हन पांच भूत सबल है देही इस देही च पांच बहुत शक्तिशाली भूत रहिंदे हन उत्थे प्यार कित्थे होएगा। कोई उन्हां भूतां नू बाहर निकाले कोई उन्हां पत्थरां नू बाहर निकाले कोई जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल नू बाहर निकाले पहलां उस नू प्यार दे काबल ते बनाए। प्यार इतनी अमलीक वस्तु है गुरु महाराज जी कहते हैं वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है अंदरली पहला सफाई फिर गुरु प्रेम का ही सागर है ते वो प्रेम साडे अंदर पैदा कर सकेगा। जब साडे अंदर प्रेम पैदा करेगा जिथे नाम वाला है उस दे नाल मिलाएगा उस मिलनी च उस नाम वाले दे नाल प्यार होएगा ते उसका नाम प्राप्त होएगा ते उस दे नाम दे नाल भी साडा प्यार पाएगा। बाकी दियां विचारां कल नूं इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। आओ इस पंक्ति नूं गा के जो कुछ कहा गया है इस नूं याद रखने की कोशिश करनी ते कल नूं समय सिर दर्शन देने। मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए एक प्यार दी एक मॉडल है एक प्यार दी इंतहा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है ते मैं जीना हां वरना कहते मेरे तो जीना भी मैनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

कल विचार इस तो भी गहरी हुंदी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप असी उस जगह तक पहुंचना है कि किवें साडे अंदर वो प्यार पैदा होवे, किवें नाम की दात प्राप्त होवे। असी इस पूरे हफ्ते दे विच गुरु बाबा जी तो यह मंग मंगांगे कि सानू वह सोझी बख्शन और उस दात के नाल सानू निवाजन। आप सब दर्शन दिओ और आनंद साहब के पाठ के विच सारे शामिल हो।

क्योंकि अरदास एक ऐसी शक्ति मालिक ने बख्शिश कीती है, कोई भी कार्य आरंभ करिए तामी अरदास, कार्य समाप्त होवे तामी अरदास, दुख विच अरदास, सुख विच अरदास। अरदास एक साडे जीवन का पहला अंग है। हुण सतगुरु सानू समझांदे ने अरदास करनी किवें। अरदास आरंभ हुंदी है

अरदास उस अगे करनी है जिसने तेन पैदा किया। हुन अरदास की विधि दस देनी, मर्यादा दस देनी कि इस तरह अरदास करिए। हुन अरदास जदों आरंभ हुंदी है असी सपौड़ी दा जाप करनी, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख खनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कई इस पढ़ते ने ऊंचे से ऊंचा भगवंत, नहीं भाई तुक है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सुवाग्याकारी, तुमरी गत मित्र तुम ही जानी। इथे भी एक मिस्टेक होती, तुमरी गत मित्र तुमरी जानी, नहीं भाई तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। लो भी अरदास आरंभ होई है, सारे खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, अरदास होन लगी। जदों खड़े हो जानी है उस तो बाद अरदास दोहराण लगी है।

क्योंकि अरदास खलो के होगी। अरदास एक जोदड़ी एक मिन तरला है ती खड़िया होके ही कीता जा सकता है। हुण जिवें किसे अदालत विच कोई केस पेश होवे जज सामने उच्ची कुर्सी ते बैठा हुंदा है केस पेश करन वाला वकील खड़ा होके कर वो खड़ा होके केस नू सुनांदा है कि एक केस किस प्रकार है। इसे तरह भाई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं उन्हां अगे असीं अपनी अर्ज सुनानी है ते सानू खड़िया होके सुनानी पए। आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सावधान हो गए खड़े हो गए तीसरी विधि

सावधान खड़े हो गए। फिर साहब कहिंदे दो एक कार कर कहिंदे ने हथा नूं दोवें हाथ जोड़ लैणी दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावी ता आने रास। हे मेरे मालिक मैं जो अरदास कर रहा जे तेनू भा जाए तेनू चंगी लगे ते मेरी अरदास मंजूर हो सकती। खड़े हो गए सावधान हुण दोवें हाथ जोड़ लै उस मालिक नू अरदास सुनाण वास्ते। साहब कहिंदे ने उस तो बाद की होना चाहिए है हजूर हाजर अरदास। सब तो जिहड़ी अहमियत रखण वाली गल है ना वह यह है कि साढ़े मन नू यकीन है भरोसा है अकीदा है फेत है कि ऐसा विश्वास है कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहा वह बैठा सुन रहा है। जे साडे मन नू ही यकीन नहीं ते अरदास सुना किनू रहे हैं। ए यकीन होना बड़ा जरूरी है, है हजूर हाजर अरदास। ओ भाई ओ ते हाजर है हजूर तेरे सन्मुख विराजमान है तू आप हाजर होके अरदास कर क्योंकि आपनू याद होवेगा गुरु नानक गए हाजरा दी नमाज विच हाजर नहीं होए सत संगत वो गए हाजरा की अरदास हाजिर होणगे बिल्कुल नहीं। मन नू यकीन होवे है हजूर वो है हां हाजिर अरदास मैं हाजिर होके अरदास करा क्योंकि बहुतियां दा शिकवा गिला है शिकायत है कि साडी अरदास मंजूर नहीं हुई बड़े चिरां तो अरदास कर रहे हैं अरदास मंजूर नहीं हुई। वह बोलिया यह भी तो हो सकता है तेनू अरदास सुनानी नहीं आई तेनू अरदास करनी नहीं आई। एक शायर ने बड़े कमाल की गल कही तो कहने खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है बस यही तो मुश्किल है ये बड़ी मुश्किल से होती है। गल तो यह है कि हुंदी बड़ी मुश्किल है जब तक सावधान ना होवे खड़ा ना होवे हाथ ना जोड़े मन नू यकीन ना होवे कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहा वह बैठा सुन रहा है अरदास सुना किनू रहा।

पतार। कंडीशन है, शर्त है, छाड़ सियानप सग। जब तक तू अपने मन की सियानप नहीं ना छड़दा, अरदास मंजूर नहीं। आपा अपनी सियानप वरतने, अपनी चतराई गुरु नूं विखाने, हुण उत्थे अरदास किथे मंजूर हो जाए। इत्थे ते भोले पाओ सुनिया जाना। साहब कहने छाड़ सियानप सगल मन तन अर्प धर। अपना मन ते तन अर्पण करके अरदास कर, वेख किवें मंजूर हुंदी। हुण इही गल्लां औखियां कि असी मन अर्पण करने, कि असी तन अर्पण करने, जो साडी अरदास मंजूर हो जाए। अरदास करदिया करदिया साडे मन च ख्याल आ जांदा है, बाबा जे सुन लवें ते बड़ी चंगी गल है, ना सुने ते किते होर जा सुनावांगा, किसी होर नूं जाके आखांगा। जदों मन ही दुचित्ता है, मन अंदर दो पा हन, उह किते अरदास मंजूर हो सकदी नहीं। भाई एक मन एक चित दे नाल आके अरदास करिए, उह सियानपां नूं छड के चतुराईयां नूं छड के मालक नूं आखीए, छाड़ सियानप सगल मन तन अर्प धर। अपना भाई मन तन अर्पण करना, यही गल सब तो औखी। जे गुरु दी गल मन लिए ते गल बन जावे। हुण सतगुरु कहिंदे ने मन ते तन अर्पण कर दे, हुण इह किवें करिए? तीन गल्लां सतगुरु ने आखी, तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाई। तन ते मन ते तन गुरु दे अर्पण कर दे, तेरी अरदास मंजूर हो जाएगी। मनुख की कर दे, तन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, पर कब्जा मेरा, कब्जा नहीं छड़दा, ओनू अपने वस विच ही रखना चाहुंदा है। सतगुरु कहिंदे ने नहीं, यह अर्पण करिए ते गल बनेगी। यह ख्याल बड़ा सुंदर चेते आया। तन मन ते तन तीन गल्लां ने। हुण कहिंदे ने तन अर्पण कर दईए, मन अर्पण कर दईए, तन अर्पण कर दईए, गल बन जाएगी। ख्याल करियो जी, आलसी कदी तन अर्पण नहीं कर सकता। आलसी बंदा कदी तन अर्पण नहीं कर सकता, ते हंकारी बंदा कदी मन अर्पण नहीं कर सकता, ते शूं बंदा कदी तन अर्पण नहीं कर सकता। तिने गल्लां बड़े कमाल दियां ने। आलसी तन नहीं अर्पण कर सकता, हंकारी मन नहीं अर्पण कर सकता, शूम तन नहीं अर्पण कर सकता। पर साहब जी, जे ऐसा हो जाए, तन भी दे दिता जाए, मन भी दे दिता जाए, तन भी दे दिता जाए, गल बन जाएगी। साहब कहते नहीं, हुक्म मनिए भाई। जब तक तू हुक्म नहीं ना मनता, तद तक गल नहीं बननी। हुण मालिक का हुक्म की है? जिस आगे अरदास, जिन उपाया अरदास ओदे अगे करनी है, जिन्हें तेनू पैदा किया है। सतगुर अपना सेव सब फल पाया, अपने सतगुरु नूं सेव ओदी आराधना कर, सारे फल दी प्राप्ति तेनू हो जाएगी। जे गुरु दा हुक्म मन के अरदास करिए, मन चो शंका

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण धो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहिंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हैं। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवां दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता से अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की, सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां का सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालिक दे करीब सिख एक पासे, तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। ए भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है। ठोकर लगी, थले डिग पई, सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद कीता गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली ने आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनूं बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईआं हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो एकदम उठ के खलोई, गर्ज के कहन लगी, ओ दुष्टा परा हो जा, आओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, आओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया,
हिल जुल नहीं सी सकदा। फिर इसने बेनती की, बसंत कौर मैनू बख्श दे, मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा, खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया, बसंत कौर दे पैरां ते मथा टेकया, एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करेंगे।

शीश दिया पर सिर न दिया। सच जिस दे अंदर सच वस जाए वो सच नूं कुर्बान नहीं होण दिंदा, अपने आप नूं कुर्बान कर जाएगा। उसकी जमीर नूं कोई खरीद नहीं सकता, उसके ईमान नूं कोई डुला नहीं सकता। पितर बाणी च क्या है, जे सच की छुरी होवे आखो वाहिगुरू, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे। मैं फिर बेनती करा, जे सच की छुरी होवे सच की काती, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे,

उसके अंदर लोभ नहीं रहिंदा। बाकी कुड़ियारां दियां छुरियां वेखियां ने ओ तां अंदर जहर भरदियां ने, अंदर ईरखा भरदियां ने, अंदर दुबदा भरदियां ने, पितर जीवन नूं नरक बणाउंदियां ने, अंदर जहर घोलदियां ने। उस दे नाल तां मनुख आत्मक मौत मरदा है, जमीर विक जांदी है, तकदीर विक जांदी है। जिसकी जमीर विक जाए समझो तकदीर विक गई। अन्न ना खाइए शरीर मरदा है, नाम ना जपिए जमीर मरदी है। जिसकी जमीर मर जाए उसकी तकदीर मरदी। जे कोई अपनी तकदीर नूं बढ़ा सकता है तो जमीर उच्ची करके। जमीर उच्ची हो सकती है परमात्मा दे नाम करके, सच करके। कहिंदे जिन्हां दे अंदर सच दी छुरी सच की काती, सच दी सार सच दे लोहे तो बनी हुई, गुर शब्द दे साण ते तिखी कीती हुई, गुर शब्द दी कमाई नाल परमात्मा दे गुणा दी म्यान विच रखी हुई, ओ तां वच जाए ना। ऐसा अणियाला काओ है, अंदर लोभ रहण ही नहीं दिंदा। आखो वाहिगुरु, उसकी जमीर नूं कौन खरीदेगा, उसके ईमान नूं कौन खरीदेगा? नहीं कोई खरीद सकता। वो अपने आप को कुर्बान कर देगा, लेकिन सच नूं कुड़ियारां पिछे कुर्बान नहीं करता। प्रमाण सामने आउंदा है, नबी खां ते गनी खां शरदालु साहिबां दे उच दा पीर बना के लैके गए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। रस्ते च पुछण वाले ने पुछया कौन ने, कहिंदे उच दे पीर ने। जदों मंजिल ते पहुंचे साहिब आप पुछदे ने, क्यों भाई नबी खां ते भाई गनी खां तुसीं झूठ नहीं बोलिया? आखो वाहिगुरु, भाई नबी खां ते गनी खां बोले सच दे दीदार करके भला अंदर कूट रह जांदा है। आखो वाहिगुरु, सच्चे दियां किरणां दा प्रकाश हो जाए, नूर दा उसनु आत्मक बल मिलेगा, मन बलवान होएगा। आखो वाहिगुरु, कहिंदे सच कहिए साडे अंदर इतनी आत्मक बल मिले असी कदे भी सच नूं इन्हां कुड़ियारां पिछे कुर्बान नहीं कर सकते। अपने आप नूं तां कुर्बान कर देंगे, लेकिन सच नूं कुर्बान नहीं होण देना। दूसरी तरफ गंगू भी बोलिया सी, मैं सच बोलदा साहिबजादे सतगुरां दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे ते उन्हां दी माता मेरे कोल हन। आखो वाहिगुरु, गंगू बोलदा मैं भी सच बोलदा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी माता ते साहिबजादे मेरे कोल, आ वेखो गंगू सच नूं कूड़ियां पिछे कुर्बान करन लगे। आखो वाहिगुरु, जिन्हां दे अंदर कूड़ दा न्यों होएगा उन्होंने सच नूं कुर्बान करना है कूड़ पिछे। आखो वाहिगुरु, पर जिन्हां दे अंदर सच है, सचो सच है। आखो वाहिगुरु, जिन्होंने गुरु शब्द की कमाई कर करके सच नूं परतख वेख लिया। आखो वाहिगुरु, गुरु शब्द की करड़ी कमाई करके उन्होंने दूजा पाव ठग नहीं सकता। आखो वाहिगुरु, वो अपने आप कुर्बान हो जाएंगे, सच कमा कुर्बान हो जाएंगे। एक होर बेनती करते, सच सुनना बहुत औखा है। आखो वाहिगुरु, बहुत ही औखा सच अंदर कुड़ियारां दे अंदर अग लगा दिंदा है। वो सच दे सेक नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि एको एक तां सच है जिस ते तप ने अंदर परम जालने हन। आखो वाहिगुरु, एको एक ता सच है जिसने अंदर ईरखा नु जाल देना। हर कूड़ेार दी हमेशा कोशिश

इन्हां पंक्तियां विच उस परमेश्वर की वडियाई करदे होया उपदेश करदे हन। जौ गुरदेओ ता कंध नहीं हिरै, जौ गुरदेओ ता देहो राखिरै। गुरु दयाल होवे जे उसने रखना है ता कोई कुछ बगाड़ नहीं सकता। किधरे कंध नहीं हिलती ते किधरे जे गुरु दयाल हो जावे ते सारा देहरा ही सारा मंदिर ही ओ घुमा दिंदा है। ए पवित्र शब्द ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जनां को देहो राखी रहे। जिस वेले भगत नामदेव जी मंदिर विच गए महाराष्ट्र दे विच, ए मंदिर है अवंडा नागनाथ दा मंदिर जेड़ा हुण भी घूमया होया। साइंस दा युग है, लोग कहंदे ने किस तरह हो सकदा है, पर ये प्रत्यक्ष नजारे हैं। नामदेव जी मंदिर विच गए हंकारी पंडता ने नीवी जात दा समझ के शूद्र शूद्र कह के भगत नामदेव जी नू कुटिया, धक्के मारे मंदिर विचों बाहर कढ दिता। मंदिर दे पिछवाड़े बैठ के भगत नामदेव जी ने उस वेले ये शब्द उचारिया, हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। ऐ भगवान ऐ मेरे बीठर, मैं ते हसदा खेड़दा तेरे मंदिर तेरे देहुरे आया सी, पर इन अहंकारी पंडता ने मैनू नीवी जादा कह के कुटिया मारिया, मंदिर विचों बाहर कढ दिता। मंदिर दे पिछवाड़े बह के भगत जी शब्द उचारते सन ते आपे ही भगत जी ने कहा, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उच्च